तो दुनिया को खुश करने में लगा रहा, लोगों की नजरों में उठने की कोशिश करता रहा, मगर कभी रुक कर ये सोचा, जिस रब ने तुझे पैदा किया वो तुझसे राजी भी है या नहीं।

आज भी वक्त है, दरवाजा बंद नहीं हुआ, सांस चल रही है, तो लौटा लोगों को नहीं, अपने रब को राजी कर ले।

बेशक कोई माँ के जैसा नहीं, जैसे हमारी वहीदापा कह रही है, ओनली दोज हैव लॉस्ट देयर मदर्स विल नो द हार्ट एक एंड मदर्स फील द हार्ट एक व्हेन चिल्ड्रन एलिनेट एंड स्ट्रेंथ देमसेल्व्स फ्रॉम देयर मदर्स. अ मदर इज अ मदर, एंड इफ शी इज लाइंग इन अ गैली एंड शी सेज दिस कलाम व्हाट टीयर्स इन हर आईज. बेशक माँ जैसा कोई नहीं इस दुनिया में जो अपने बच्चों को समझ सकती है, जो अपने बच्चों के लिए क्या क्या कुर्बानी नहीं करती. मैसेज है बर्थडे का मेरे मोहम्मद अमीर के लिए, 10 जून के लिए, हाफिज़ा 13 जून के लिए, और मेरे दामाद कबीर पाक 14 जून के लिए. मे अल्लाह ब्लेस देम ऑल विद गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ, खैर एंड बरका इंशाल्लाह. एंड दिस कम्स फ्रॉम दलवी अब्बास पाक एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज. और मेरी प्यारी दोस्त रशीदा पा भी ये प्रोग्राम इंजॉय करी, शी enjoyed the two kalams on Muharram and of course on Mother. और एक community message आया है हफसानी जंजीरा सोसाइटी की तरफ से, उनके 110 साल हुए हैं, तो ओपन डे है और वो चाहते हैं कि प्लेयर एंड सपोर्ट रजिस्ट्रेशन होगा एंड इन्वाइटिंग ऑल the members from the Hafsan Gao to attend an open day on Tuesday 16 June at Gausia Manzil from 14:30 to 16, and they are looking for players and managers and team supporters and of course volunteers. So age hogi 18 years to 35 years, or age between 13 and 17 will be under consideration, and 35 to 50 also will be under consideration. तो अगर आप जाना चाहे ओपन डे के लिए तो ज़रूर जाइएगा. और आप अताउल्ला साहब को 08290-6786 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. जंजीरा हफसानी सोसाइटी, 110 साल लेगेसी के, ओपन डे प्लेयर एंड सपोर्ट रजिस्ट्रेशन होगा और दे इनवाइटिंग ऑल मेंबर्स फ्रॉम हफसान गांव टू अटेंड द ओपन डे ऑन ट्यूजडे 16 जून एंड गौसिया मंजिल फ्रॉम 14:30 टू 16 to register in participating as players, management and coaches, team support, volunteers, and ages from 18 to 35. कह रहे कि age between 13 and 17 and 36 and 50 will be considered, तो जरूर चाहिएगा. और आप अताउल्ला साहब को 08290-6786 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. कल अंजुम आरा खान का भी कॉन्सर्ट हुआ था बैकस्टेज थिएटर में, काफ़ी इंटरटेनिंग था. शल ऑल द आर्टिस्ट वर गुड, और जो सोलो आर्टिस्ट थे बैंड्स के, उन्होंने भी बेहतरीन अपने हारमोनियम और गिटार पे बहुत अच्छा बजाया था. और काफ़ी ऑल द सिंगर्स वर गुड, ऑल द सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स वर गुड, स्पेशली खलील दलवाई के बेटे, उन्होंने बहुत ही अच्छे माशाल्लाह गाने गाए, काफ़ी अच्छे था. और इंशाल्लाह ऐसे ही आप अंजुम आपा हमें इंटरटेन करते रहे. भूलेगा नहीं कल इस्लामिया में उनका गज़ल का प्रोग्राम हो रहा है, रूहानियत इस्लाम ऑडिटोरियम में, शाम के 7:30 बजे ज़रूर शामिल होइए. अगला कलाम है हर एक ख्वाब मुकम्मल ना हो.

हर ख्वाब सच हो जरूरी तो नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए, अल्लाह कामयाबी दें, लेकिन कभी कभी बाज़ वक़्त मुश्किलें आती हैं और ये एक आजमाइश होती है। अगला कलाम, हम सस्ते थे लोग महंगे निकले।

जी हाँ, तकरीबन रात के 9:35 हो चुके हैं और प्रोग्राम की समाप्ति का वक्त होने जा रहा है। ये आखिरी इतवार था 1447 का ज़िलहज महीने का। इंशाल्लाह चांद रात होगी मंगल या बुध को, हम जा रहे हैं 1448 में। रब्बुल आलमीन से फिर से दुआ करते हैं कि ये जो गया साल उसमें काफ़ी मुसीबतें थी, परेशानियां थी मुसलमान को दुनिया भर में, तो अल्लाह ताला आने वाले साल हर मुसलमान के लिए आसानी पैदा करे। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी दे, जो भूखे हैं उनकी भूख मिटा दें। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे टेक्नीशियन शब्बीर जेकब्स का, जो बहुत मेहनत करते हैं। विलिंगली ही हेल्प्स मी, ही डज अ फैंटास्टिक जॉब। दुआ करें इस बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी हम दुआ करेंगे और आप भी हमारे लिए दुआ करें। इसके बाद आप सुनेंगे नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में अली मौला अली मौला, और साकिब अली साहब की आवाज़ में जान की साकिब अली साहब की आवाज़ में भी एक मनकबत होगी, और फिर सलामी होगी यसर रज़ा कादरी साहब की आवाज़ में। बरकत का मतलब ज़्यादा माल या ज़्यादा चीज़ें होना नहीं, बरकत यह है कि अल्लाह आपके पास मौजूदा चीज़ों में खैर, सुकून और फ़ायदा डाल दे। अगर ज़िंदगी में बरकत चाहिए तो इस्तग़फ़ार और अपने नाम व अमाल बना के नमाज वक्त पर अदा करे, सदका करे, वालिदैन की इज़्ज़त और ख़िदमत करे और गरीबों की मदद करे। अल्लाह ताला हमारे ज़िंदगी में, रिज़्क में, वक्त अमाल में ऐसी बरकत अता फरमाए जो दुनिया व आखिरत की भलाई का सबब बन जाए। इंशाल्लाह आमीन। आने वाला साल सबके लिए बरकतों वाला हो, खुशियों वाला हो, ये दुआ है हमारी। इसी पैगाम के साथ मैं सुफिया दिलवी आपसे रुखसत चाहती हूँ, ये वादा लेते हुए कि अगले हफ्ते इसी वक्त हम मिलेंगे। ज़िंदगी बाकी रही तो फ़ी अमानिल्लाह, शब बख़ैर, जज़ाकल्लाह खैर।

0: हनीफ भाई, अशरफ भाई और आदम भाई, आतिफ भाई, जितने भाई हैं सभी से खास तौर से अयुब भाई तवज्जो का ताली बजाओ।
1: इतनी जल्दी
0: सलीम भाई, वसीम भाई।